पीएफपी सरकार विदेशी निर्णय कार्यक्रम हल्का फुल्का में होने चाहिए को इस समय मौसमी को साथ में चर्चा कर रहे कुछ विश्व का पांच चर्चित नेता र उन्हीं का विशेष गुण को बारे में रहेको छ। पहले हमने चर्चा कर महात्मा गांधी को बारे में अब बने रहने नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में का नेल्सन मंडेला लामो समय दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरुद्ध को लड़ाई में लगे व्यक्ति हुन्। यही कारण उन्नी 27 वर्षसम जेल बस्नु पर्यो। तर उनको लड़ाई सत्य को पक्ष में थी। उनले सदा समानता र मानव गरिमा का लागि लड़ी रहे। यही कारण उनी दक्षिण अफ्रीका को लोकतांत्रिक रूप में निर्वाचित पहिलो राष्ट्रपति समेत बने। इसरी उनले लामो समयसम्म अफ्रिकी नेल्सन कांग्रेस मार्फत जातीय विभेद विरुद्ध सशस्त्र र शान्तिपूर्ण दुवै प्रकार का संघर्ष गरे। जेलबाट निस्किएपछि उनले यहाँ चाहिँ यो क्षेत्र अछेत नागरिक बीच को खाडल पूर्ण सत्य र मेलमिलाप आयोग गठन गरे। आज धेरैले उनको क्षमा दिने गुण बारे पनि बखान गर्छन्। दशकौं सम्म जेलमा यातना भोगे तर जेलबाट निस्केपछि उनले बदलाको भावना राखेनन्। आफूलाई दमन गर्नेहरू विरुद्ध बदला लिनु सट्टा मेलमिलापको बाटो रोजे। शत्रुलाई पनि मित्र बनाउन सक्ने उनको यो क्षमताले दक्षिण अफ्रिकामा हुन सक्ने सम्भावित गृहयुद्ध टर्यो र एउटा नयाँ राष्ट्रिय निर्माण भयो। र यसैगरी अर्को नेता रहेको छ अब्राहम लिंकन। उहाँको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्ने नै छौ। अहिलेको लागि आउनुहोस् लागौ फेरि पनि यो मिठो गीत सुन्ने क्रमतर्फ।

선대원은 더 해만타라 나라의 우리산의 호키. 아바 프라파트칼이 나와서 가리그마 팔아보이고서 아주 고라기 네팔 라스터 뱅크에 토끼고 쿨라바자르 바이데식 비니마에 덜고 US डॉलर एक को खरीद दर 151 रुपया 71 पैसा बिक्री दर 152 रुपया 31 पैसा यूरो एक को खरीद दर 176 रुपया 89 पैसा बिक्री दर 177 रुपया 59 पैसा पाउंड स्टर्लिंग एक को खरीद दर 204 रुपया 21 पैसा बिक्री दर 205 रुपया 2 पैसा स्विस फ्रैंक एक को खरीद दर 194 रुपया 21 पैसा बिक्री दर 194 रुपया 98 पैसा अस्ट्रेलियन डलर एक को खरीद दर 108 रुपया 98 पैसा बिक्री दर 109 रुपया 41 पैसा कनेडियन डलर एक को खरीद दर 109 रुपया 97 पैसा बिक्री दर 110 रुपया 40 पैसा सिंगापुर डलर एक को खरीद दर 118 रुपया 83 पैसा बिक्री दर 119 रुपया 30 पैसा जापानीज येन 10 को खरीद दर 9 रुपया 53 पैसा बिक्री दर 9 रुपया 56 पैसा चाइनीज युआन एक को खरीद दर 22 रुपया 42 पैसा बिक्री दर 22 रुपया 51 पैसा साउदी अरेबियन रियाल एक को खरीद दर 40 रुपया 43 पैसा बिक्री दर 40 रुपया 59 पैसा कटारी रियाल एक को खरीद दर 41 रुपया 66 पैसा बिक्री दर 41 रुपया 82 पैसा थाई भाट एक को खरीद दर 4 रुपया 67 पैसा बिक्री दर 4 रुपया 69 पैसा यूएई डिरहाम एक को खरीद दर 41 रुपया 30 पैसा बिक्री दर 41 रुपया 47 पैसा मलेशियन रिंगित एक को खरीद दर 38 रुपया 26 पैसा बिक्री दर 38 रुपया 41 पैसा साउथ कोरियन वान 100 को खरीद दर 10 रुपया 6 पैसा बिक्री दर 10 रुपया 10 पैसा स्वीडिश क्रोनर एक को खरीद दर 16 रुपया 41 पैसा बिक्री दर 16 रुपया 48 पैसा डेनिश क्रोनर एक को खरीद दर 23 रुपया 67 पैसा बिक्री दर 23 रुपया 76 पैसा हांगकांग डॉलर एक को खरीद दर 19 रुपया 36 पैसा बिक्री दर 19 रुपया 43 पैसा कुवैती डिनार एक को खरीद दर 494 रुपया 65 पैसा बिक्री दर 496 रुपया 61 पैसा बारेन डिनार एक को खरीद दर 402 रुपया 39 पैसा बिक्री दर 403 रुपया 98 पैसा र अन्तमा ओमानी रियाल एक को खरीद दर 394 रुपया 5 पैसा बिक्री दर 395 रुपया 61 पैसा सुन्दै हुनुहुन्थ्यो आजको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको खुला बजार वैदेशिक विनिमय दर. अब हामी गीत सुन्छौँ. रूपक ढोटेलले गाउनुभएको यो गीतको पालो परेको छ कम्मर मर्काई मर्काई.